तेरे दर्शन को हम बारे। आप जी दी पवित्र बाणी विचों ए शब्द किवें अकाल पुरख तो सड़के जा रहे हैं, किवें बलिहार जा रहे हैं।

चल के विखाया। जे आप जी ने लिखिया है जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, जैसा अमृत तैसी बिख खाटी, जैसा मान तैसा अभिमान, जैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुक्त। संसार विच ऐसा होके विचरना बड़ा मुश्किल है कि जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, सोने नू और मिट्टी नू एक समान समझना, मान और अपमान नू एक समान समझना बड़ा मुश्किल है, अमृत और जहर नू एक समान समझना कोई मखौल दी गल नहीं। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक एक अखर ते चल के विखाया। साई मिया मीर जो समय दे पूर्ण पुरुष सन, जिन्होंने श्री हरिमंदर साहब की नींह रखी सी, जद ए सुखमनी साहब जी की पवित्र बाणी सुनी तो बेनती की, गरीब निवाज कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी संसार विच है भी सही जेड़ा सोने ते मिट्टी नू एक समान समझे, अमृत और जहर नू एक समान समझे, मान और अपमान नू एक समान समझे, कोई है भी सही ऐसा मनुख? तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, मियां मीर जी समा आवेगा तुहानू आपे ही पता लग जाएगा भाई ऐसा मनुख है जां नहीं। ते जदों समा आया धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी तत्ती तवी ते बैठे हन, किथे आप दा पवित्र शरीर मखमलियां और सोहणियां सेजावां ते बैठदा सी, मखमली गद्दियां ते बैठदा सी शरीर, हजारां प्यार वाले श्रद्धालु गुरु के सिख फुलां दी वर्खा करदे सन, सैकड़े गलां विच हार पाउंदे सन, सिर ते छतर अते चौर झूलदे सन, किथे इतना सत्कार ते किथे अज धन गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बैठे हन, अग बल रही है ते चौर दी थां ते गर्म रेते दे कड़शे साहिब जी दे शीस विच पाए जा रहे हन, ते गुरु अर्जन देव पातशाह फिर भी मुस्करा रहे हन, चेहरे ते कोई आभा है, ओही नूर है जो सशोभत मखमली गद्दियां ते बैठ के वेख्या सी, अज ओही नूर ओही आभा अज गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चेहरे ते देख के साईं मियां मीर जी दे नैन कटोरे भर आए। गरीब निवाज एक ही कौतक है, आप समर्थ पुरख हो, आप चाहो ता एक अख दे फोर विच धरती नूं पुठियां कर सकदे हो, एडी समर्था दे मालक हुंदियां भी आप इतना कष्ट सहार रहे हो, उचारण करो श्री। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, साईं मियां मीर ओ बचन चेते करो, कदे तुसी पुछया सी कि कोई ऐसा पुरख है जो मान और अपमान नू एक समान समझे, सोने और मिट्टी नू एक समान समझे, अमृत और जहर नू एक समान समझे। क्या गरीब निवाज आप जी ने एक एक अखर ते चल के दसिया, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपका शरीर तत्ती तवी ते बैठा होवे, सारी प्रकृति सारे आप दे हुकम विच खड़ोते होन। ए पातशाही तां क्या है, लोक परलोक दे आप पातशाह होंदे होए भी इतना कष्ट सहार रहे हो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, मियां मीर इस चम दे नाल प्रीति क्या करनी है,
प्रीति चामशों क्या किया, जे प्रीति करनी है ता अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दे नाल प्रीति कर। इस चमड़े दे नाल क्या प्रीति करनी है, ए ता एक दिन मिट्टी हो ही जाना है। तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम से, गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे जे साडा तन तप रहा है गर्म रेते दे करशे पै के तत्ती तवी ते, तो कोई गल नहीं की होया, क्योंकि आपने लिखिया सी तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए, ते ओई कौतक करके आप विखारे सन। आख्या मिया मीर तन तप रहा हम शांत है हरि नाम स्यों, जे तन तप रहे तो की होया, नाम जप के साड़ी आत्मा साड़ा मन तो शांत है ना। प्रीति चामसों क्या हुआ, मिया मीर ने सेजल नेत्रां दे नाल आख्या हे गरीब निवाज मैं ए दुख सहार नहीं सकदा, गर मुझको हुक्म दीजे जालम को जान से मारू, जे तुसी नहीं कोई शक्ति विखाउंदे तो मेरे विच समर्था है, जे आप कृपा करो मैनू हुक्म करो ता मुझको हुक्म दीजे जालम को जान से मारू, अर उनकी शाह रग पर रख दू अभी दो धारा। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ने ओ शांत स्वरूप ओ बाणी दे बोहत ओ नाम दी मूरत गुरु अर्जन देव पातशाह सुनते ही सतगुरु ने शांति का कुल्फ खोला, पाना ही पाना कह कर जलते हुए को ठारा। आख्या पाई असी पाना मनना है और पाना मन के दसना है, अगो किस तरह सेवक मनंगे जे मैं आप नहीं मनांगा, उच्चारण करो श्री। मिया मीर ने आख्या गरीब निवाज मैं ए वेख नहीं सकदा के आप दे रोम रोम विच शाले पै चुके हो, ऐसा दुख। तां गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे मिया मीर जितने जिस्म पे पड़ेंगे शाले, जितने जिस्म पे पड़ेंगे शाले उतने सिख होंगे सिदक वाले, उतने ही प्यार वाले सेवक होंगे भाई। इसलिए असी पाना मन के दसना है, आज जिस तरह पतंगा आके क्षमा तो कुर्बान हो जाता है, जे सेवक अपने मालिक तो कुर्बान नहीं होया तो सेवक कदा होया, उच्चारण करो श्री। इसलिए हजूर बख्शिश कर दिया हे वाहेगुरु तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शना तो मैं बलिहार जाता हां सदके जाता हां, और यही दात तेरी।

प्रभु परमेश्वर दा नाम जपया करो, हर वेले नाम ही सिमरिया करो और परमात्मा दा नाम अमृत पींदे रहा करो। साई फरमाउंदे हन

सुबह करके अर सात समुद्र की मत कहो, काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो।

0: सर्व न कर
1: बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न
0: कोट पराद हमारे अनक विधि समझाओ
1: हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम

संत जना मेरे राम। नदी दे पानी नू आराम नहीं आउंदा क्योंकि दे अंदर शव सागर दे मिलन दा तरल है, क्योंकि पानी शव सागर तो ही विछड़िया। हुकम विच बदलां दा रूप तार के वधिया फिर ठहरिया नहीं, एदे अंदर तड़प है, पत्थरां दीआं चोटां सहारदा, जंगलां विचों लंघदा, खलां नूं चीरदा, भज्जा जांदा। एदा निशाना शव सागर, इसे तरह प्यार वालियां रूहां प्यारे दे रस्ते ते तुरदी है, जेड़ा तुरे ही नहीं है वो पहुंचेगा। तुरन वाले नू आस कदे ना कदे तो पहुंच, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म ही सही, पर आस तो मन विच दर्शना दी प्यास तो प्यास बुझ जाए मुबारक है, जे अंदर प्यास लगी है तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी उस प्यार वाली रूह तो भी कुर्बान जाते, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जाए, जुड़े है मालिक दी आराधना। सूरज ने अख खोली उठे और नदी दे कंडे कंडे तुरिया जाने, चादर दी बुकल मारी साई दे सिमरन ते बाणी दिया तुकां पढ़दे, अचानक ही सामने तकिया कोई इंसान है, दूरों भज के आउंदा पर नदी दे किनारे ते आके खड़ो जा। एक वेरी दूजी वेरी भी भज के आए, तीजी वेरी जिस वेले भज के आया ते कुछ करना चाहुंदा सी, के सोने हाथ ने इस दी बां फाई ते प्यार नाल पुछिया, क्यों भाई की करन लगा है? तक कोई सुंदर मूर्ति है जिसके चेहरे ते बड़ा नूर है, अखां च मस्ती क्योंकि अमृत वेले जागण वाला गुरु दी बाणी पढ़न वाला गुरसिख जिहड़ा है उसके चेहरे ते कोई अदम नहीं खेड़ा। अयाश इंसान पाप करन वाला उहदे चेहरे ते कदे भी ए वस्तु नहीं आ। अमीर दा तन डंका च पिया है उहदा मत्था चमकदा, अरे झूठा तन है जिन्हां गुरसिखां ने सच दा वणज कीता है, नाम रूपी तन कट्ठा कीता है उहनां दे मस्तक ते भी चमक हुंदी। पाणी च लिखिया जे को तन धरती विच दबे तां मत्थे चमकदे, बाणी पढ़न वाले दे मस्तक तो ही जापदा ए लगन वाला की करन लगा है। इन्हें क्या मैनू छड़ दो, मैं इस दुनिया तो तंग आके तंग आके की करन लगा है,
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ।

कीर्तन में प्यार वाले कीर्तन रिकॉर्ड कर रहे, टेपा लगी, कुछ बुद्धि अनुसार जो सेवक बोली जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता। ये तो छोटी टेप है, गुरु नानक पातशाह के दरबार इतनी बड़ी सारी टेप लगी हुई है। जो भी गुरु कुमारी भाई इतने आता है, जिस पहुना आता है वो रिकॉर्ड होया जाता है।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सब तिसका सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंते को है सो जानू काचा।

जन को सब अपने का तान जो तो करे करावे स्वामी सा मसलत परवान चरण शरण हम अनाथ नाथन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल साखी।

मज्जन होत साधु तुरे आवण जानू रैठित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुरनारायणू दंगुर गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ।

कर शब्द विचार गुरु कर रे मन मेरे गुरु कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे गुरु नैन पैन गुर गुर करो गुरु नैन पैन गुर गुर करो गुरु सत्य कव नल कहे गुरु सत्य कव नल कहे जिन गुरु न देखियो ने कियो

आगे को किछ तुल्हा बांधो। कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुल्हा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

जिथे दुख विच है गुणवान वे दुखी है, हर विद्वान सुखी ना हो सकिया। बीमार ते दुख विच

रोना चाहिदा है तैनू तेरा पति परमेश्वर मिलिया है। रोना मैनू चाहिदा है जिनू अजे पति परमेश्वर मेरा मालक ओ प्रभु नहीं मिलिया। मालक रहमत करे मैनू भी मेरा पति

आप संगत में बैठे हैं, यहाँ का रंग अपना है, कहीं जुआ चल रही है उसका अपना रंग है, कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे हुए।

दुनिया के सब रंग सतनाम श्री वाहगुरु के अंदर का जिसने नाम जपा उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है, बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी ओछे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्ताद विच फरमान दी, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहु महादान होय के मांग्यो धन देत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा।

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत हो कहूं होय के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ

कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सो कहां न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही।

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीश तपगी साधे, लाख जोगीश करते जोगा, लाख पोगीश भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बाधिया, तेरा अंत न पारा बाधिया।

पौन साधना कतेक बद अरब के आर भी अराध्य तेरू नाम है। फारस की फरंगी माने कलदारी को रसी डाने पश्चिम के पश्चिमी पहचान निज काम है। मरहट्टा मंगल तेरी मन सो तपस्या कर, मरहट्टा मंगल तेरी मन सो तपस्या कर।

फरंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारा वारिया। रो के रुगेले मग देश के मंगेले भी बंगसी बंगेले, पाप पुंज को मालते हैं गोखा गुन गावे, गोखा गुन गावे।

वचन वाणी नु किया ये सतगुरु तुहाडे मुख चो निकले हुए वचन बाणी दे रूप दे इना दी की महिमा है के पुनिया दा देदार हुंदा पर पापियां दा निर्गुण आ रहे दा भी निस्तारा तुहाडे बचन तुहाडी बाणी करदी है।

0: आन बहुत मिल बैठत। जदों सुखां दे साधन होंदे हन, चार पैसे पले होण मनुख दे, ता बहुत लोग रिश्तेदार सज्जन मित्र आके घेरदे हन। रहस चौहू दिस घेरै, हर एक मनुख चाहुंदा भी मैं इस दी प्रसन्नता लवां। ते जदों धन दौलत पदार्थ मुक जांदे हन, तां फिर विपत परी सब ही संग छाड़त। कोई दुख आ लगे, मुसीबत पै जाए, धन दौलत चले जान, ते फिर रिश्तेदार भी मुख मोड़ जांदे हन, सज्जन मित्र भी मुख मोड़ जांदे हन। बल्कि परों कोई आ रहा होवे, वेख लवे, ते पासा वट के पासे चला जांदा भी किदे कुछ मंग ही ना दवे। उच्चारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: इसे लई हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन, सुख में आन बहुत मिल बैठत। रहत चहू दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त। को ना आवत नेरै, घर की नार बहुत हित जांसो। बड़ा हित होंदा है मनुख चंगे तो चंगी वस्तु घर वाली वास्ते लियाउंदा, चंगे

0: के शेख ताती वाव ना लग गई एवी नाल परदेश। फिर कीर्तन सोहेला पढ़ना, गुरु का सिख एक व्यापारी जिसने काफी तन अपने लक नाल बदया हुए ते दूसरे देश जा रहा व्यापार करन दे, इस दे मगर चोर लग गए। ए समय सिर अमृत वेले उठता है, इशनान करता है, नितनेम करता है, दिने सफर करता है, शामानु सोदर दा पाठ करना जिथे भी ठार आवे ते सौन लग्या। कीर्तन सोहेले दा पाठ अते ताती वावना लग गई, बिलावल महला पंजवा ताती वावना लग गई, पार ब्रह्म शरनाई चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई ते शब्द पढ़ के सौ जाना। कई दिन ए सफर विच इसनू लग गए ते चोर भी इस दे मगर लगे रहे, चोरी कर नहीं पाए। बड़ी हैरानी हुई चोरां नू, भाई ए कैसा मनुख है जिदे तक असी हाथ नहीं पा सकते, ते आके इना चोरां ने बेनती कीती, महाराज गुरु के सिख क्योंकि पहरावा तेरा गुरु के सिखां वाला है, असी तेरे मगर कईयां दिनां तो लगे हुए हां धन चुराउण लई, पर रात नूं जदों तू सौ जाने तां इक किला उसर जांदा है, कोट उसर जांदा है तेरे चफेर, जिस करके असी तेरे तक अपड़ नहीं पैंदे। केड़ा तेरे पास जादू है, केड़ी शक्ति है जो तेरी रक्षा करती है। ता इस गुरु के सिख ने कहा, मेरे पास पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शब्द है, बाणी है, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का उच्चारण किया होया कीर्तन सोहेला, ते जे कोई प्यार दे नाल पढ़ के सौ जाए ते फिर किसे दी जरूरत नहीं है। ताती वाव ना लगी पार ब्रह्म शरनाई चौगिर्द हमारे राम कार। दृष्टांत दिता के ए ओ लकीर है जो पै जांदी है, इस दे अंदर कोई आ नहीं सकदा। जिवें भगवान रामचंद्र जी ने लकीर पाई सी, सीता नूं कहा सी इस लकीर तों बाहर नहीं जाना, पर जदों कोई लकीर तो बाहर जांदा है तां फिर दुख वापरदे हन। उच्चारण करो श्री
1: वाहिगुरु। वाहे
0: गुरु का सिख बाणी दे अंदर रहिंदा है, बाणी दी खुराक है, बाणी नूं पुंछदा है, बाणी नूं खांदा है, बाणी दा हर वेले सेवन करदा है, हत्थां पैरां नाल कम करदा है, ते मन गुरु की बाणी विच जुड़िया रचना तो जप रहा श्री वाहिगुरु, ते फिर भाई क्यों ना बाणी उसकी रखा करे। इसलिए हजूर बख्शिश कर दें, जानको चिंता बहुत बहुत दी व्यापै रोग, क्योंकि सारा जगत ही चिंता दुखां दी लपेट विच आया पिया, पर कोई बाणी नाल प्यार करे, बाणी सिदक दे नाल पढ़े ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ, ਗੌਣ ਕਰੇ ਚੋ